माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है, वो घर पे आता है।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more email.

गुड मॉर्निंग, अलार्म स्नोज हो गया, कॉफी मिल गई, लाइफ सॉर्टेड है? नहीं, परफेक्ट, देन यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। मिर्ची मॉर्निंग्स बस अभी शुरू हुआ है। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं तुम्हारी मॉर्निंग की दोस्त हूँ। बिलीव्स एवरी प्रॉब्लम डिजर्व्स ईदर अ सॉल्यूशन और एट लीस्ट अ रियली रियली गुड मिर्चीदार बैंगर। व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग लंच बॉक्सेस, प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम, Getting your kids ready for school or sitting in traffic wondering मैं यहाँ पर क्यों आया। जो कुछ भी कर रहे हो फिलहाल, मैं कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और आज का प्लान काफी सिंपल है। बॉलीवुड की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, फैमिली फ्रेंडली बातें, देसी नॉस्टैल्जिया की बातें, कुछ फ्रेश अपडेट्स एंड इनफ गुड वाइब्स टू मेक योर डे वेरी वेरी मिर्चीदार। एंड हे, डोंट बी अ साइलेंट लिसनर, टॉक टू मी, कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन या फिर कैसे शुरुआत हुई तुम्हारे दिन की। इंस्टाग्राम और एक्स पर फाइंड मी एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड कम से हाई ऑन व्हाट्सएप 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

98.3 Mirchi. It's hot.

इमेजिन तुम आज से 100 साल पहले उठे हो, क्या हुआ था उस दिन? यही पता करने के लिए ये सेगमेंट है मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ. एंड आज है October 6th एंड इट्स गॉट सम सीरियस हिस्ट्री अटैच्ड टू इट. बैक इन 1536 इंग्लिश स्कॉलर एंड बाइबल ट्रांसलेटर विलियम टिंडेल वाज एग्जीक्यूटेड इन बेल्जियम फॉर हियरसे. और आज देखो लोग कुछ भी ट्वीट कर देते हैं. फास्ट फॉरवर्ड टू 1927 द जैज सिंगर प्रीमियर्ड इन न्यूयॉर्क. इट बिकेम द फर्स्ट फीचर लेंथ मूवी विद सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग एंड हेल्प्ड किक स्टार्ट द एरा ऑफ टॉकीज. Then in 1973, Egypt and Syria launched a surprise attack on Israel on Yom Kippur, beginning what became known as the Yom Kippur War. 1981 mein Egyptian President Anwar Sadat was assassinated during a military parade commemorating the 1973 Suez Crossing. Then we go from Earth to space. 1995 mein astronomers announced 51 Pegasi b, the first confirmed planet discovered orbiting a sun-like star. Matlab ki hum sirf Earth ke guests nahi hain. Finally, 2010 में Instagram officially launched on iOS और यहाँ से शुरू हुआ filters का सिलसिला. And that's आज के दिन की हिस्ट्री. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Follow me, मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp का नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम। एंड इफ यू आर स्टेपिंग आउट टुडे 6th अक्टूबर को, हियर्स योर वेदर रियलिटी चेक। राइट नाउ इट्स अराउंड 46 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लियर स्काइज है एंड दैट नॉर्थ वेस्ट विंड इज मेकिंग इट फील क्लोजर टू 42 डिग्रीज फारेनहाइट। यानी कि थर्मामीटर रॉस फ्रॉम फ्रेंड्स की तरह कह रहा है आई एम फाइन। एंड गुड न्यूज ये है कि 0% चांस ऑफ रेन टुडे विद क्लियर स्काइज स्टिकिंग अराउंड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। आज अम्ब्रेला को छुट्टी दी जा सकती है। टेम्परेचर्स विल क्लाइम टू अराउंड 64 डिग्रीज फारेनहाइट और 18 डिग्रीज सेल्सियस दिस आफ्टरनून, बट बाई टुनाइट वी आर ड्रॉपिंग टू अराउंड 39 टू 41 डिग्रीज फारेनहाइट। सो मॉर्निंग में एक लाइट जैकेट अपने साथ कैरी करना, इवनिंग में प्रॉपर स्वेटर की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें। विंड्स विल बी अराउंड 7 टू 8 माइल्स पर आवर एंड ह्यूमिडिटी गोज फ्रॉम रफली 38% दिस आफ्टरनून टू एज हाई एज 85% ओवर नाइट। एंड यस्टरडेज हाई वॉज 70 डिग्रीज फारेनहाइट एंड टूडे इट्स ओनली गोना टच 64 डिग्रीज फारेनहाइट। सो यस, आज का वेदर इज ऑलरेडी लोअरिंग योर एक्सपेक्टेशंस। बाहर निकलोगे तो SPF 50 ++++ लगाकर ही जाना एंड ऑफकोर्स मिर्चीदार वाइब्स बनाकर रखो। प्रिसला के साथ सुन रहे हो द मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। मिर्ची आवर का 3 का टाइम है जहां पर 3 अपडेट्स मिलेंगे तुम्हें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले उषा वांस द यूएस सेकंड लेडी हैड अ स्कैरी लिटिल मोमेंट व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर एट जॉइंट बेस एंड्रूज। शी ब्रीफली लॉस्ट अ फुटिंग व्हाइल कैरियिंग हर 11 वीक ओल्ड सन एलेक इन अ कैरियर बट ग्रैब द रेलिंग एंड क्विकली रीगेन्ड हर बैलेंस। थैंकफुली बोथ वर ओके। वीडियो ऑल्सो शोज पीपल नियर बाय नॉट इमीडिएटली स्टेपिंग इन। नंबर 2 पर FBI डायरेक्टर कैश पटेल इज एंगेज्ड। हिज फियांसे कंट्री सिंगर अलेक्सिस विल्किंस इज 27 एंड पटेल इज 46 and she announced it with the line went and got the law involved. All right, that caption deserves its own wedding invitation. And lastly, cricket lovers, Pakistan champions have withdrawn from the World Championship of Legends after the Pakistan Cricket Board did not issue the required NOCs. Reports say there was also disagreement over conditions involving last year's India-Pakistan episode and handshakes. The scheduled India-Pakistan match on October 10th is therefore ऑफ। अगला मिर्ची आवर का 3 आएगा अगले घंटे में। अभी फिलहाल जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नवरात्रि में ना 9 दिन गरबा करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन 9 दिन में 9 गोल्ड चेन्स जीतने का चांस देने वाला सिर्फ मिर्ची है। अब जल्दी बताओ ये खेलना है कि नहीं खेलना है, क्योंकि मैं बोले तो प्रिसला आ चुकी हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। इस नवरात्रि विरानी जूलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। मतलब कि सिंपल है, 9 नवरात्रि नाइट्स होंगी, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होंगी, हर दिन जीत सकते हैं लकी विनर्स ढेर सारी प्रेशियस गोल्ड चेन्स। अब अगर तुम सोच रहे हो प्रिसला ये मुझे भी चाहिए, तो अरे ऑब्वियसली यार गोल्ड है बॉस। पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो नवरात्र एंड उसे भेज दो 9033647244 पर, यानी कि 9033 मिर्ची पर। प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। और अगर तुम ओकट्री रोड के आसपास रहते हो, नहीं भी रहते हो, तो वहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे, चेकआउट करो जाकर। 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर अमेजिंग ऑफर्स चल रहे, फेस्टिवल इज राइट अराउंड द कॉर्नर। विजिट करो viranijewelers.com पर फटाफट से। और हाँ, मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम अपने आंसर्स मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। मिर्ची प्रिज इंस्टाग्राम पर MIRCHIPRIS इज माई हैंडल, उस पर टाइप करके भेजो नवरात्रि अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माय बर्थडे बेबीज, दिस इज प्रिसिला विद यू, तुम्हारी ऑफिशियल चीयरलीडर, बिकॉज़ आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे। तुम्हारी बर्थडे गेस्ट लिस्ट में कुछ सीरियसली फेमस लोग भी शामिल है, लेट्स फाइंड आउट कौन है। सबसे पहले बॉलीवुड से बात करें, संजय मिश्रा, लेट एक्टर विनोद खन्ना की आज बर्थ एनिवर्सरी है, एक्टर मयंक चैंग, ध्रुव सारजा एंड सनी सिंह, ये सबके सब आज तुम्हारे साथ अपना स्पेशल डे शेयर कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉलीवुड साइड। वी गॉट एलिजाबेथ शू फ्रॉम लीविंग लास वेगस, एमिली मॉर्टिमर, योन ग्रिफिथ फ्रॉम फैंटास्टिक फोर, जेरेमी सिस्टो एंड ब्रेट गेलमैन फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स। और जेंजी कॉर्नर में सिंगर एंड इन्फ्लुएंसर एडिसन रे प्लस हनी फ्रॉम न्यू जीन्स, एंड म्यूजिक लवर्स के लिए केविन कॉर्नन का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो अगर आज तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, केक का फर्स्ट बाइट जो है वो बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हारे बहुत ही अमेजिंग होने चाहिए और कैलोरीज की चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, समझे। हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम मिर्ची एंड मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ऑफकोर्स मी, बोले तो प्रिसिला। और मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। यू कैन Send me your shout outs for yourself or your friends and WhatsApp agar karna chahte ho 9033 Mirchi is my number, that's 9033647244. Mirchi Dar Bangers ka time hai, stay tuned and stay hot.

0: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, अब तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: राजज्वेल्स.com wishes everyone happy and healthy morning।

सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बेहतरीन अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सुनने का टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर. दिस इज प्रिसिला विद यू. नंबर वन पर फ्रांस से डिस्टर्बिंग अपडेट आ रही है. लेंस में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान एक 15-year-old स्टूडेंट ने रिपोर्टेडली एक पुलिस ग्रेनेड उठा लिया. अपेरेंटली उसे वापस थ्रो करने की कोशिश में और वो उसके हाथ में ही एक्सप्लोड हो गया. ही लॉस्ट हिज हैंड. पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस के बाद इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है. एंड दिस वन इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कोलैटरल डैमेज. नंबर टू पर नेपाल से हार्ट ब्रेकिंग फ्लड अपडेट. August 26th की डेविस्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स के बाद नेपाल ने एक्टिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वाइंड डाउन कर दिया है. 1,455 पीपल डाइड एंड 5,285 लोग अभी भी मिसिंग है, इंक्लूडिंग नियरली 190 इंडियंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स. अब फोकस सर्च से रिहैबिलिटेशन और रीबिल्डिंग पर शिफ्ट हो रहा है. एंड लास्टली इंडियन क्रिकेट में एक इमोशनल चैप्टर क्लोज हुआ है. हरमनप्रीत कौर हैज स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन्स टीम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. शी लेड इंडिया इन 211 मैचेस एंड मोस्ट memorably lifted India's first women's World Cup title in 2025. Captaincy khatm hui hai, lekin Harmanpreet ka cricket journey abhi baki hai. And that's your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connected raho mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp ka number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: आज स्टार्स क्या बोल रहे हैं पता करने का टाइम आ चुका है। वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन
0: यानी कि मेष राशि। आज थोड़ा सा बॉस मोड ऑन कर लो यार, बट पहले अपना पर्सनल स्पेस और पेंडिंग काम जो है उसे सॉर्ट कर लो। न्यू प्रोजेक्ट्स के पीछे भागने से पहले पुराने का हिसाब क्लियर करो। एंड रिमेम्बर, क्लीन रूम इज इक्वल टू क्लीन माइंड। लकी कलर इज रस्ट ऑरेंज। लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। समवन इंपॉर्टेंट मे वांट टू रिकनेक्ट और फाइनली टॉक अबाउट सम अनफिनिश्ड बिजनेस। सो लिसन, डोंट इंटरप्ट एंड प्लीज आई टोल्ड यू सो को थोड़ी देर के लिए अपने बैक पॉकेट में रख लो। लकी कलर इज सेज ग्रीन। लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, वर्क में कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन का गेम थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेम स्ट्रेटजी सेम रिजल्ट, नोप। पॉज, रीथिंक एंड ट्राई अ न्यू एंगल। समटाइम्स प्रॉब्लम नहीं अप्रोच को अपडेट करना पड़ता है। लकी कलर इज कोबाल्ट ब्लू। लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी खर्क राशि, रिकग्निशन इज कमिंग योर वे। कॉम्प्लीमेंट मिले तो एक्सेप्ट करो। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया बोल के अपनी अचीवमेंट को डिस्काउंट मत दे दो यार, बस फ्रेज के साथ फैक्ट्स भी वेरीफाई कर लेना। लकी कलर इज येलो। लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, मून एंड जुपिटर आर गिविंग यू फुल स्पॉटलाइट एनर्जी। कॉन्फिडेंस हाई है, करिश्मा हायर है, बस कोई नई ऑफर आए तो एक्साइटमेंट में फाइन प्रिंट को बाद में देखेंगे मत बोल देना। एंड ट्रैक दैट स्पेंडिंग। लकी कलर इज मेरी गोल्ड येलो। लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, स्ट्रक्चर इज योर सुपर पावर टुडे। ओल्ड लेसन्स का यूज करो। प्लान्स चेंज हो तो पैनिक नहीं अडेप्ट करना। एंड प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल डिसीजंस स्लो एंड स्टेडी। ओके, यूनिवर्स इज सेइंग एक्सेल शीट फर्स्ट, इमोशनल डिसीजन लेटर। लकी कलर इज प्लम पर्पल। लकी नंबर इज 18। एंड दैट वॉज योर फर्स्ट 6 राशियों का राशि जोन। बाकी की 6 राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड ऑफकोर्स गो एंड चेक आउट माई सोशल। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.

0: झूमे गाओ हरेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी गमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो।
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: आज तुम्हारे राशि जोन में क्या कहा जा रहा है तुम्हारे स्टार्स की तरफ से, लेट्स फाइंड आउट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इब्राहिम यानी कि तुला राशि, थॉटफुल जेस्चर्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस एंड सम लवली करियर एनर्जी ब्राइटनिंग योर डे। बैलेंस इज योर वाइब टुडे। कीप थिंग्स ब्यूटीफुल, क्रिएटिव एंड पीसफुल। बेसिकली अवॉइड अननेसेसरी ड्रामा। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, योर ब्रेन मे बी डूइंग दैट थिंग वेयर इट टर्न्स वन टाइनी प्रॉब्लम इनटू अ नेटफ्लिक्स का मेगा ओरिजिनल सीरीज। डोंट ओवरथिंक व्हाट यू कांट कंट्रोल। जेंटल वर्ड्स विल प्रोटेक्ट योर close relations and your reputation gets a little cosmic boost. Lucky color is burgundy. Lucky number is 11. Sagittarius yani ki dhanu rashi, creativity, talent and initiative are all getting a spotlight today. Go for it, but joint money matters, thoda break lagao. Enthusiasm is great, but bro, guaranteed returns is not a financial strategy. Lucky color is turquoise. Lucky number is 24. Capricorn yani makar rashi, future planning takes center stage. Schedule, organize karo, practical stuff niptao and get your life admin together. Today is basically the universe handling you a checklist and saying, beta, kaam kab karoge? Lucky color is charcoal gray. Lucky number is 8. Aquarius yani kumbh rashi, slow and steady wins today. Step by step efforts will take you further than rushing just because somebody else is in a hurry. Stand your ground and protect your peace. Tumhara timeline, tumhara business. Okay, lucky color is electric blue. Lucky number is 16. Pisces yani ki mean rashi, keep that positive radiant energy going. A little romance, laughter or social fun could seriously lift your mood. And when a new idea pops up, trust that gut feeling. But maybe think before you leap. Lucky color is coral pink. Lucky number is 5. And that's it. Your Rashi Zone Part 2 has come to an end. Lekin Mirchi Mornings par abhi main bolu to Priscilla tumhare saath hu. Lekin tum bhi mera saath ho. Show me some love on Instagram and X. Follow me and drop me a message on WhatsApp 90336472444. That's my number. Stay tuned and stay hot.

ऑलराइट, बिफोर आई डिसअपीयर लाइक योर वीकेंड आफ्टर संडे नाइट, एक लास्ट फिल्मी धमाका देकर जाना बनता है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप। आज का शो खत्म हो चुका है लेकिन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का मिर्च मसाला नेवर एंडिंग है डार्लिंग। द जेलर 2 ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन मंडे एंड द इंटरनेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग व्हाट द इंटरनेट डज बेस्ट, प्रेडिक्टिंग अ ब्लॉकबस्टर बिफोर द पॉपकॉर्न हैज एवर बीन ऑर्डर्ड। फैंस आर लविंग द ट्रेलर विद सम कॉलिंग इट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ट्रेलर कट्स एंड इवन प्रेडिक्टिंग it could become one of the biggest Tamil hits. And then there's the fun speculation, could Hrithik Roshan make an appearance in the movie? Up whether that cameo happens or not, Rajinikanth sir is back and the swag is intact. And clearly, the internet has already booked its first day, first show seats. And with that, mera sign off karne ka time aa chuka hai. You go and check out Jailer 2 ka trailer aur mujhe batao kaisa laga, tumko tumhari kya views hai iske bare mein. Mera handle name hai Mirchi Praise, Instagram aur X par, and WhatsApp ka number hai 9033647244. Thank you so much for hanging out with me on Mirchi Mornings. Drive safe, work smarter, pretend to work if your boss is watching you right now, and keep that Mirchi Desi स्पिरिट लाउड। अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए हैव फन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

चीज सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हरी जा।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
2: आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहां के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब के आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दिल

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

फिल्म के नाम की वजह से शाहिद कपूर की डेब्यू मूवी का नाम चेंज करना पड़ा था। दिल विल प्यार व्यार मूवी का नाम है यार, जिसके बारे में आज हो रही है चर्चा। रिलीज इन द ईयर 2002, दिल विल प्यार व्यार को डायरेक्ट किया था अनंत महादेवन ने, जिसमें आर माधवन, जिमी शेरगिल, नम्रता शिरोडकर, सोनाली कुलकर्णी, हर्षिता भट्ट और राकेश बापट जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। सो इस फिल्म का पर्टिकुलर नाम जो है दिल विल प्यार व्यार, उसी के अराउंड शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क रिलीज होने वाली थी। लेकिन जब ये मूवी अनाउंस हुई तो इश्क विश्क के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम अपने नाम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो फिल्म पहले इश्क विश्क प्यार व्यार के नाम से रिलीज होने वाली थी एंड लेटर इट वॉज टर्न्ड इनटू जस्ट इश्क विश्क। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे फिल्म जो देखने जाते हैं आप, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मिलकर उतनी बड़ी फिल्म बनाती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।